0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम, तुम, तुम।
0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ,

0: ओहो मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ परदेसी हूँ।
1: देश परदेश, प्यार में कैसा देश परदेश।

0: आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम कलर ब्लाइंड।
1: क्या?
0: अरे पगली समझी नहीं, मेरी नजर जरा कमजोर है।